0: उड़ान ते अपने बिजनेस नु करो प्रमोट। आज ही अपनी एडवरटाइजमेंट बुक करने लिए कॉल करो प्रभ संधु होरा नु 4378700001 4378700001।
1: होवेगी मुद्दियां ते गलबात, रखांगे तुहानू अपडेट।
0: हासे चट्टे नाल तुहाडा दिल लाऊगा, संधुआं दा मुंडा बड़ा ग्रेट।
1: शायरी ऐसी कि तुसी भी करोगे एप्रिशिएट, ता फिर होयो ना लेट।
0: मंडे टू फ्राइडे 9 to 10 PM तक, फिर शनिवार 8 to 9 PM तक, AM 530 रेडियो उड़ान।
2: जे तुसी भी साडे रेडियो प्रोग्राम ते अपना बिजनेस एडवरटाइज करना चाहुंदे हो, अपने बिजनेस नु प्रमोट करन वास्ते तुसी सानू संपर्क कर सकदे हो 4378700001।

0: ब्रिजमोहन, कॉन्टेक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: जी तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो अज ही सानू कॉल करो 647-504-1557। पंजाबी लहरां दे किसी भी प्रोग्राम दी फीडबैक देने दे लई कॉल करो 647-504-1557 या मैसेज करो पंजाबी लहरां दे इंस्टाग्राम पेज ते। SS Lawn Care थोड़ी लॉन दी संभाल दे लई बेस्ट चॉइस। तुसी नवा घर लगवाना चाहुंदे हो या सॉड इंस्टॉल करवानी चाहुंदे हो, सीजनल ग्रास कटिंग, फर्टिलाइजर, वीड दी ट्रीटमेंट अते हर एक किस्म दी लॉन दी मरम्मत दे लई तैयार हन। फ्लावर बेड बनवाओ या साफ करवाओ अते प्लांट्स दी ट्रिमिंग भी करदे हन, चाहे होवे रेजिडेंशियल, कमर्शियल या फार्म हाउस दा काम। अज ही कॉल करो 437-655-1984
2: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
3: SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000।
4: What is the reason?
5: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
4: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
6: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.

0: physical locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: जी तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557 ढिलों वीडियो 1980 तो पंजाबी कमी

0: आप सभी श्रोता
1: में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम, या अली मदद। और बहुत ही प्यारा सा मौसम है इस वीकेंड में, तो आप अपने बच्चों के साथ खूब एंजॉय कीजिए। बहुत सारे लोगों के बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और उनके बच्चों को हम प्रे करते हैं बहुत ही सक्सेसफुल, अच्छे अच्छे जॉब्स मिलें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और इसी को विचार को लेकर के प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यूज आपको चाहिए, लेटेस्ट जो बारबेक्यू हैं, बड़े टेक्नोलॉजी वाले हैं, आप वो लेने चाहते हो तो आपको मिलेंगे टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटरमॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनके ग्वाल्प में है, तो आप उनके स्पेशल देखिए, फादर्स भी आने वाला है। अगर आप अपने फादर को बारबेक्यू लेके देना चाहते हो, या फिर आउटडोर फर्नीचर लेके देना चाहते हो, बढ़िया टीवी लेके देना चाहते हो, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर उनकी स्पेशल देखो और फिर उनको कॉल करो, ऑर्डर बुक करो। 905-799-005-790-045। अब फादर्स डे आने वाला है, और भी बहुत सारे किसी के बर्थडेज एनिवर्सरीज आती रहती हैं, आपको गोल्ड के सोने के गहने लेने हैं, डायमंड अप टू 70% ऑफ लेने हैं, तो आप एल मदीना ज्वेलर्स पे जाइएगा। एल मदीना ज्वेलर्स आपके लिए माल्टन में एयरपोर्ट रोड पे मौजूद हैं, तो और जानकारी के लिए आप एल मदीना ज्वेलर्स को, अगर आप कोई सेट ऑर्डर करना चाहते हो, डिजिटल गहने ऑर्डर करना चाहते हो, तो आजकल वही आज के लिए बेहतर रहते हैं, क्योंकि वो देखने में भारी लगते हैं पर बहुत लाइट, बहुत कम सोने में बने होते हैं, तो आप 905-673-0100 पर कॉल कीजिए, 905-673-0100 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है किचनर वाटरलू गोल्फ में, तो आप नसीब थिंड को कॉल करो 519-546-1260 519-546-1260। अब जब आपने घर खरीद लिया, फिर मूव भी होना है, आपको मूवर चाहिए, तो मूवर के लिए आप एच के मूवर्स को कॉल कीजिए, उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, और साथ साथ आपको आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। आप कॉल कीजिए 416-524-8404-1652-46704 एच के मूवर्स। मूव होना है तो कनाडा भर में मूव करने में आपकी पूरी वो मदद करते हैं। अब आपके लिए एक गाना तो बनता है ना, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटी सॉन्ग। तो ये दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचान लिया। तो क्या है कि जब कोई दिल में को भा जाता है, तो माना था वो देखो था उसमें ग्राफी कमाल, तो लेट्स

एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी दोस्त मीरा। तो आप के लिए एक और बहुत गीत गाना, तो ये जो गाना है ये भी ऐसा आपको सुनाऊंगी। तो अब आपके लिए घूंघट का जो जमाना था वो आपके लिए वापस ले आएंगे। मूव होना है तो आपके लिए एच के मूवर्स की बहुत सारी टीम्स हैं कनाडा भर में, आपको मूव करने में मदद करते हैं। तो आप ने अगर कहीं भी मूव होना है, आपका हर सामान हिफाजत से पहुंचाते हैं, तो आप कॉल कीजिएगा एच के मूवर्स को 416-524-7004, 416-524-6704। तो आइए सुनिए ये प्यारा सा गीत, थोड़ा सा क्लासिकल नंबर, लता जी का गाया हुआ गीत है ये।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। जी हाँ, तो बहुत सालों से आपने हमारा साथ दिया है और हमारा प्रोग्राम सुनते हो। जो भाई बहन अपने कमेंट्स भेजते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। रात को भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे, और 10 से 11 बजे आप हमें जरूर सुनिएगा। आज थोड़ा सा मैंने जो प्रोग्राम को चेंज किया है, तो उम्मीद रखती हूँ थोड़ी सी मैंने आपको, कोशिश करूँगी कि आपको गाने ज़्यादा सुनाऊँ। तो अब आजकल गर्मियाँ भी आने वाली हैं, और आपने अगर फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है फादर्स डे के लिए, फादर को आपने आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू लेके देना है, टीवी लेके देना है, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी से शॉपिंग कर लीजिए। और उनकी स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटरमॉडलैंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन आपके लिए उनकी गोल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए और उनको कॉल कीजिए 905-799-0045, अपने ऑर्डर बुक कीजिएगा। अब अगर आपने अपनी ऐनक बनवानी है, नज़र की ऐनक, धूप की ऐनक, किसी तरह की भी, तो आप अल्फा ऑप्टिकल पे जाइए। चिंगूजी एंड विलियम्स पार्कवे पे मौजूद है। तो अल्फा ऑप्टिकल, उनके डॉक्टर आता है 2-3 दिन, तो आपको बढ़िया प्राइसेस देंगे। फादर्स डे के लिए सन ग्लासेस आप लेके देना चाहते हो, तो आप अल्फा ऑप्टिकल .com पर जाकर उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। अब आप सुन रहे हो प्रोग्राम संसार, तो आइए आपको ये एक बड़ा सा, बड़ा मजेदार सा गीत सकते हैं, चुलबुला सा गीत, अगर पसंद आए तो आप जरूर, अगर आप मूविंग करी है तो एच ओवर।
1: हम्म।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो आइए आपका जो गानों का ट्रेंड है थोड़ा सा बदलते हैं, थोड़ा सा नए नए जमाने में आ जाते हैं। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। मनप्रीत अख्तर ने गाया था, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तो मैं एक हफ्ता ये बस अपनी यादें दे गए हैं हमें, और बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही से बढ़िया। जब तक दुनिया की उनके इनों को भी सुनें, उनकी के प्ले हो, तो उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए। अगर आप टोरंटो आके खरीदना बेचना चाहते हो तो आप खुशवंत सिंह बैंस को 7776771313। आपने ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर आपके लिए 715 असिस्मेंट रोड मिसिसागा में मौजूद है। और जानकारी के लिए आप उनको 905-625-0055 पर कॉल कीजिए, 9056250055। मास्टर कोलिजन डिपो, अगर आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है, आप लंदन में रहते हो, आसपास के इलाके में रहते हो, तो मास्टर कोलिजन अब लंदन में है, और उनका आप उनके मास्टर कलेक्शन .com पे जाके आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। शाहरुख खान और काजल के ऊपर फिल्माया गया था ये गीत। कुछ कुछ होता है का गाना है ये।

जी हाँ, तो एक बार फिर से तो अभी वो ये है, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको है, तो इसी दिन आप चेक नहीं कर पाएंगे। सो ये ऐसा दिल्ली का था, किसी तरह वो आज आग नहीं कराए थे। तो आप सुन रहे हो संसार, आपके लिए गाना बहुत बढ़िया सा।

ये सही लगता है ना, प्यारे दिल लगता है कि पहले प्यार होता है? बताओ, दिल लगा के फिर प्यार होता है, मतलब दिल मिलते हैं तो फिर कहीं जाके बात बनती है। और ये जो दिल मिलने का बात है, वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं कई बार। गलत तो जिंदगी की असलियत सामने आती है, इसमें भाग जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अगर आपने अभी तक अपना टैक्स नहीं भरा, HST फाइल करनी है, तो गुरप्रीत रोडे को कॉल करो 416-302-8135, 416-302-8135 पे आप गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिएगा। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार।

अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पण सुभद्दा भला, हैव ए वंडरफुल वीकेंड एंड बी सेफ, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

सतगुर होए दयाल तसरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कब हूँ चूरी है, सतगुर होए दयाल त दुख न जानिए, सतगुर होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके हैं जी एक खूबसूरत सवेर दे विच, खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके। मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधु रोज़ की तरह हुक्मनामा साहब सुनिया, मैं भी बहुत आनंद दे विच। एक तो दिन बहुत सोहना, हमेशा ही कुदरत बनाए सारे दिन बड़े खूबसूरत होंगे। तो हुक्मनामा साहब जो थोड़े कानों पैंता, तो गुरबाणी जो सवेरे सवेरे थानू सुनने मिल जाए, तैनू कहते कि सरवण जो आप कर लीए तो फिर पूरा दिन चढ़ती कला वाला हो जाता। सो मेरे नाल जिन्हें भी स्रोते, जिन्हें भी साढ़े भैन भरा हुक्मनामा साहब की सांझ पा रहे सी या गुरबाणी सरवण कर रहे सी, सारयां दा प्यार सत्कार सत श्री अकाल आदाब नमस्कार। तुसी जुड़े हुए हो पंजाबी लहरां दे नाल। तो अज की खूबसूरत सवेर, शनिवार का खूबसूरत दिन है, तो अज भाई वीकेंड आ, सारिया दी छुट्टियां आ। 6:16 हो चुके आ, थोड़ा साड़ा साथ होने तो लैके 8 बजे तक बनया रहेगा। पर यह जिहड़ियां टाइम की चेंजिंग थोड़ी जी हो रही है, अगे जाके रमेश जी साडे नाल जुड़नगे तो वो बारे थानू असी होर इस आई थिंक टाइम चेंजिंग की गलबात करांगे, क्योंकि हुण आपां जुड़िया करांगे वीकेंड नूं, शनि एतवार को 6 to 8 जिदा पहला प्रोग्राम का पूरा सरचार चलता सी। सो उसी तरह आप इस प्रोग्राम के जुड़िया करांगे। तुसी बहुत सुलझे सियाने ते समझदार स्रोते हो, समझ सकोगे कि चेंजिंग्स ऑलवेज थोड़िया बहुतियां प्रोग्राम्स होंदियां रहिंदियां। सो हुण तंबड़ साहब प्रोग्राम लैके आया करनगे मंडे टू फ्राइडे 6 to 7 बजे तक, तो 7 to 8 बजे तक फिर थोड़ा साडा साथ बनया रहेगा। रमेश जी उसी तरह 1 घंटे की न्यूज़ थोड़े नाल साझियां करिया करनगे। सो 6 to 7 तंबड़ साहब आया करनगे, तुसी ऑलरेडी उन्होंने सुनते हो AM 530 ते, पहला तुसी उन्होंने 1350 ते सुनते सीगे। सो वो भी आ चुके ने, बहुत नतड़क बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालक, और नाल दी नाल ये भी कही कि बहुत धड़लेदार जे रेडियो होस्ट कही। तो तंबड़ साहब तुसी सवेरे 6 to 7 सुनिया करोगे, तो 7 to 8 फिर पंजाबी लहरां लैके मैं थोड़ा मेज़बान प्रभ संधु हाजिर होया करूँगा, तो नाल रमेश हुशियारपुरी जी। उस तरह ही खबरों का सिलसिला अपना जारी रहेगा। हो सकता कि हुक्मनामा साहिब की जिहड़ी सांझ आ उस दे बारे जाके अगे देखांगे असीं इस नूं किवें कंटिन्यू करना, क्योंकि दिन का जिहड़ा ऑलरेडी सुझाव आ वो ऑलरेडी दिन 5-6 बजे तक शुरुआत हो जाती, तो 7 बजे काफ़ी लेट हो जाता। सो इस बारे जिदा भी मैनेजमेंट का कोई अगों रिस्पोंस आऊगा जरूर तुहाडे नाल साझा करांगे। पर फिलहाल वीकेंड 6 to 7 उहदे विच कोई बदलाव अजे, 6 to 8 माफ करना, उहदे विच कोई बदलाव नहीं रहेगा। सो ओनली जिहड़ा वीकडेज़ मंडे तो लैके फ्राइडे तक जिहड़ा प्रोग्राम होया करूगा उहदे विच आपां 1 घंटे की सांझ तुहाडे नाल पाया करांगे। सो हुण रुपिंदर जी की जगह पर मेरी ड्यूटी लगी है जी, सो मैं तुहाडे रूबरू आया करूँगा। सो बाकी गल्लां बातां अगे जाके रमेश जी उन्हां नाल भी करांगे। सो 905-673-3337 स्टूडियो का 1-1 नंबर, 905-673-3337 ते प्रोग्राम की शुरुआत करदे आं कि उम्मीदां दे वहां नूं हर हाल विच वगदा रखी, उम्मीदां दे वहां नूं हर हाल विच वगदा रखी, आसा वाले बनेरे ते कोई दीवा तां जगदा रखी, कोई दीवा तां जगदा रखी। सो दीवे जगाउणे आसां दे, उम्मीदां दे, चढ़दी कला दे। सो पंजाब दी गल करांगे, रमेश हुशियारपुर जी साडे नाल जुड़नगे। सो पंजाब दी गल, सियासत दी गल, ते पंजाब दी गल तो मैनूं बड़ा ही खूबसूरत रणजीत बावे होणां दीआं सतरां याद आईआं, सो ओह सुण लईए। तद तक रमेश हुशियारपुरी होणां नूं आपां लैंदे आं नाल, ते गल्लां बातां दी सांझ पाउणे आं, ते अज दे प्रोग्राम दी शुरुआत करदे आं। सो

0: जल्दी पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600
1: 905-400-5526 नंबर है। तो चरणप्रीत किशोर कहना चाहोगे?
2: हाँ जी, अपना तो जरूर सानू सेवा दा मौका दो गेटिंग लई, सारा इवेंट असी टेक केयर।
1: मैं सब तो वड्डी चीज दसदा, स्वाद टेस्ट रेट पर नाल नाल कस्टमर केयर आ, जिन्नी थोड़ी आओ भगत की जाती है
3: जी।

0: जल्दी पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600
1: नवंबर
2: स्टार्ट किया, दिसंबर से शुरू किया।
1: कितने साल हो गए?
3: 4 साल।
1: ब्रिजी तुम जल्दी बूढ़ा कर दोगे मेरे को। 4 साल हो गए संतोष
2: फास्ट
3: जी।
2: हाँ, टू फास्ट।
1: ब्रिजी 1000 की गिनती में लोगों को सर्व किया।
2: हाँ, ऊपर है जी,
1: ऊपर है ना। लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम कौन सी देखने को मिली तुम्हें?
2: लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर एंड स्ट्रेस टेंशन, लैक ऑफ स्लीप,
1: लैक ऑफ स्लीप का प्रॉब्लम, सोते नहीं प्रॉपरली, स्ट्रेस एंड टेंशन
2: बहुत।
1: संतोष जी मैंने में से कुछ मिला? मैंने उनका पानी डलवाना था बस।
3: मैं गई थी इनके पास।
1: शुक्र है अल्लाह का। बोलते ना कि शुक्र है अल्लाह का, जी है, वो हो गया
3: बिल्कुल।
1: हाँ, सो मेल और फीमेल दोनों का आप ख्याल रखते हैं?
2: दोनों के लिए करेंगे जी।
1: हाँ जी, सो दोनों लिए अलग अलग ने, मेल थेरेपिस्ट अलग ने
3: जी,
1: फीमेल थेरेपिस्ट अलग ने,
3: बिल्कुल,
1: यानी हस्बैंड वाइफ इकट्ठे भी जा सकते। तुसी ना जिंदगी च अपने आप नूं वधिया तोहफा देना, वो हुंदा कि अपने आप नूं सुकून देना, चंगा खाना। मैंने शुरू में ब्रिजी बोला
2: जी
1: कि ये $4.99 वाली मिठाइयां खाते हैं जाके, फिर वो डब्बे भरते हैं
3: जी,
1: वो डब्बे भर के लोगों को दे के आते हैं, फिर ये मांगते हैं कि जब हमारी बारी आएगी ना शगन देने की, हमें ये नीयत है ना, नीयत, ये नीयत अमीर नहीं होने देती
2: जी।
1: बाबा बख्तर में लोगों को यही बोलता हूँ कि नीतां वड्डियां करो। ब्रिजी चलो हम बोलते हैं, एयर पे बोलेंगे, हम लोग बोल इसलिए रहे हैं गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा ना, हम लोग लंगर चलाते हैं
2: जी।
1: साल च 2 भंडारे आते हैं, 2 लंगर आते हैं एवरी डे। अज भी लंगर चलना पे, आज भी लंगर चल रहा है, अभी जब हम बात कर रहे हैं, इस टाइम से पहले चलता है रोज शाम को। हम हर रोज लंगर तैयार करते हैं इंडिया में, जो लोग अपाहज हैं, जो लोग मजदूर हैं, सारा दिन वजन ढो के रिक्शिया के उत्ते पिठा के उत्ते रहन लिए घर नहीं हजे लै सकते, ठीक है, या खाना नहीं बना सकते, 14 घंटे रिक्शा चला के कोई बंदा खाना बनाने की कैपेसिटी नहीं रहती। हम लोग लंगर बनाते हैं रोज, एक पक्का फिक्स स्पॉट है वहां पे, ये मजदूर लोग पहुंच जाते हैं, ये लोग वो लंगर खाते हैं और थैंक्स करते हैं। थैंक्स हमारा नहीं करते, उस परमेश्वर का करते हैं, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, नानक दास मुखते जो बोले यहां वहां सच हो गए। सो जो मुंह कढ दिंदे ने परमात्मा दे परमेश्वर दे भगत, वो पूरा हो जाता है। सो ये जो लंगर ने ब्रिजी, मैं नहीं चला रहा, मैं बताता हूं क्यों। ये मेरे साथ 3-4 फैमिलीज और हैं, मैं हैरान हो जाता हूं जो यहाँ की फैमिलीज हैं
3: जी।
1: वो लेबर जॉब भी करते हैं कई लोग, उसमें से लेबर वाले, तो कई लोग रज्जे हुए ने, इन्ने कमीने हुए हुए ने कि उन्होंने ढिड नहीं भरते पे, तो कई लोग लेबर करके आके। मैं एक दिन खड़ा था, वो लेडी आके $100 पकड़ा के गई, मैं भैन जी कहता, कहती वीर जी उ लंगर लाने, मैं उस पैसे पाने नहीं है। वहां पर एक लेडी जाती है, निष्काम सेवा करती है, 2 बहनें हैं, दोनों गाड़ी स्कूटर पे बैठ के रोज खाना बना के घर से लेके जाती हैं। ये लंगर हम खोलने लगे थे जब इसका बजट बहुत बढ़ गया था, मैंने उनको बोला छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, फिर अगले साल कर लेंगे। उसने बोला नहीं छोड़ना नहीं, आप शुरू कीजिए, मैं घर से करूंगी, मैं बनाऊंगी, कोई पैसा नहीं मैंने लेना। मैं कहा नहीं, मैं इतना काम नहीं करूँगा, क्योंकि हमने उसकी मदद की थी कोरोना में, उसने जिम खोला था, उसने सिर्फ एक कॉल की थी, मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं जिंदगी में कभी मिला नहीं, मैं नहीं जानता कौन है, पर वो ब्लेसिंग देती रहती है। इसीलिए ब्रिजी मेरा कोई भी कम पुट्ठा पिया हो ना, परमात्मा सीधा कर देंगे ने। ये मैं अपने लिए नहीं दसदा, मैं लोगों के अंदर स्पिरिट भर रहा।

0: Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 90545-12600.
1: ओ यार, बिजनेस दा माड़ा हाल हो रहा है। कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
2: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा ता हो ही नहीं।
3: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
5: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज।
6: ओ हीट वेव आ गई।
7: की गल इतनी जल्दी?
6: हां जी, ते पता है इसका की मतलब?
7: सनस्क्रीन, हाइड्रेशन, एनका ते सेविंग्स भी,
6: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है। होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99।
7: ओहो,
6: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
7: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
6: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
8: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
9: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੀ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋ ਕਪਲ ਆ, ਜਸਟ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ 70,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ, ਹਮ 7 ਈਅਰਸ ਸੇ ਹਮ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਮੇ ਹਮਾਰਾ ਲਾਈਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਬ ਇਸਮੇ ਹਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਮੇ ਡੀਲ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਕੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਥ ਮੇ ਆਪਕੋ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਪਕੇ ਖਾਤੇ ਮੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫ੍ਰੀ ਕੋਲੈਟਰਲ ਫ੍ਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 30,000 to 100,000 ਇਜ਼ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ। अब इसमें से जो अप्रोक्सीमेटली हाफ पोर्शन है वो क्या है, नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से, अगर फैमिली ऑफ फोर है, हस्बैंड वाइफ दोनों इजी कोर्स करते हैं घर के कंफर्ट से, फुली ऑनलाइन वाला जो कि हमारा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ज्यादातर क्लाइंट्स वही चूज करते हैं जिसमें असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है, और 2 to 3 घंटे देने हैं जी, IIT में एडमिशन नहीं हो रहा आपका, सिंपल कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। अब इसमें कहते हैं फैमिली ऑफ टू में बनेगी फंडिंग up to $45,000, family of 3 mein banegi up to $60,000, family of 4 mein banegi up to $80,000, family of 5 mein agar husband wife dono padhte hain to banegi up to $100,000. ab mazey ki baat isme agar family of 4 hai, jaise aapne example diya mujhe, family of 4 mein 80,000 mein se $40,000 kya hai, non refundable tax free grants, rest $40,000 kya hai, optional loan at 0%, jo ki 1 to 1.5 years तक 0% पे, उसके बाद अपने पे बैक करना स्टार्ट करना है जी, 1.5 साल बाद पे बैक करना अपने स्टार्ट करना है, तब ब्याज दर क्या है, 2.5% पूरे साल का। मतलब फंडिंग हासिल करी, आपने गवर्नमेंट से, स्किल भी हासिल करी, और फंडिंग भी थोड़े टाइम की बात रह गई जी, उसके बाद तो हम यूज करेंगे वर्ड लोन लोन लोन, अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, ग्रांट ग्रांट ग्रांट।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੈਰੀ ਔਨ ਦੇ ਟੋਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਨ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਫਰੀ ਲੋਨ ਆ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ 0% ਇੰਟਰਸਟ, ਅਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ?
1: 30 to 90 days ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਲਾਇੰਟ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਂ, स्टूडेंट के अकाउंट में, स्टूडेंट कोई भी हो सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है जी, गवर्नमेंट की पॉलिसी एज पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, 30 to 75 years तक के हमारे क्लाइंट्स हैं, और बहुत ज्यादा नंबर है, हम मतलब 7 years से बिजनेस में है। तो इसमें इसमें यही है कि 2 to 3 batches रह गए हैं, 70 दिन के बाद 1 अगस्त से जब नया अकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा, तब आज जो फैमिली ऑफ 4 में हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ रहे हैं, 80,000 में से $40,000 क्या है जी, नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स। तब 1 अगस्त के बाद अगर आप एनरोल करेंगे किसी बैच में, तब क्या होगा, 80,000 का लोन आएगा, ग्रांट गवर्नमेंट कट कर रही है पूरी। तो इसलिए आप अभी एनरोल करें, हमारे पास रोज आज भी लाइक 3 क्लाइंट्स जो आए थे वही कह रहे थे, सर अभी करो एडमिशन, हम आपको 1 साल से सुन रहे हैं, अब हम पता लग गया है बंद होने वाला है, तो हमें कर दो, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए जी, फंडिंग आज मिल रही है, जो गवर्नमेंट $30 billion यूक्रेन को दे चुकी है, वो अगर $4 billion एडुकेशन में स्पेंड करे तो कोई कैच नहीं है।
0: वेरी गुड, ते ए भी नहीं कोई जिहड़ी फीस पैसा होगा, वो पैसे दा सी की करना, ए तां नहीं कोई टर्म हैगा कि इहनूं तुसीं इत्थे ही स्पेंड करना, तुसीं उह कोर्स दे रिलेटेड जॉब करोगे तां ही तुहानूं इह फंड मिलूगा, कुछ इदां दा तां नहीं?
1: कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन, कोई कोलैटरल, कोई सिक्योरिटी नहीं है, गवर्नमेंट आपको एजुकेशन के लिए फंड कर रही है, बैंक से फंडिंग नहीं ले रहे, लिविंग एक्सपेंसेस किसी के लिए है, ग्रोसरी करना किसी के लिए है, गैस भरना, आप गैस का प्राइस तो नहीं रोक सकते ऊपर जाने से, लेकिन आप स्किल भी हासिल कर सकते हैं और गवर्नमेंट की फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करते हैं डायरेक्ट। आज आप एनरोल होते हैं, आपको 1 हफ्ते में लिंक आता है गवर्नमेंट से आपकी ईमेल आईडी पे, आप अपना ईमेल आईडी पे आप अपना बैंक खुद सेटअप अपने घर पे अपने बच्चों से कराते हैं, हमारे जो क्लाइंट्स उनकी एज मिडल एज है, कुछ 75 years के भी है, उनके बच्चे उनका बैंक सेट करते हैं, हम तो हाथ लगाते नहीं उस चीज को,
0: खुद खाते पहले ताडे खाते च पैसे होंदे, तुसी ट्रांसफर करदे हो परिवारां नूं जां?
1: नहीं जी, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट, आज आपने एनरोल करा, एक हफ्ते में आपको ईमेल आया, आपने खुद अपना बैंक अपने घर पे खुद ही अपने बच्चों का सेट कराया। बच्चे बड़े होशियार है ना, जैसे हमारे एक मिडिल एज क्लाइंट्स हैं, बच्चे उनके बच्चे ही कर देते हैं वाले आईटी वाले काम सारे। तो विद इन 30 to 90 days में क्लाइंट्स के अकाउंट में फंडिंग चली जाती है डायरेक्ट, और कोई इसमें कैच नहीं है जी। हम 7 years से बिजनेस में, टेंशन ना लीजिए, हम लाइक अच्छी तरह काम कर रहे हैं। लोग आके हम खुद जब काम हो जाता है इतनी दुआएं ब्लेसिंग्स देते हैं, तो इसलिए इसमें कुछ कैच नहीं है। लोग आते हैं हमें कहते हैं सारा मेरे
0: जे कोई 60 year old आ ते ओहो उन्हें लगता कि सानू बेटा असि एग्जाम तक एनरोल तो हो जाएंगे पर सब दिन तो एग्जाम देने सानू कई एग्जाम तो फोबिया होंगे तो वह फिर पेपर पास करना जरूरी है जी या किवें?
1: इसलिए ज्यादातर क्लाइंट चूज करते हैं असाइनमेंट्स वाले कोर्सेज जो है जो बहुत ही सौखे ने।
0: अच्छा,
1: कुछ ऐसे जो प्रोग्राम भी हमारे पास जिसमें सेल्फ स्टडी है, जिसमें टीचर है ही नहीं, टीचर लेड नहीं है, वो सेल्फ स्टडी मॉडल है। गवर्नमेंट उनको ही फंड करती है, गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट फीस।
0: तो जस्ट अटेंडेंस ते असाइनमेंट ही ने ते जिदे ना कोर्स पास हो जाने।
1: अटेंडेंस 75% होनी चाहिए और असाइनमेंट्स आपने देनी है। जैसे कुछ कोर्सेज में बहुत ही इससे भी ईजी है जो हमारे पास है, तो आप आएंगे हम उसको एवेल्युएट करेंगे। आप PR स्टेटस आपका होना चाहिए, प्रोटेक्टेड पर्सन है सिटीजनशिप का, एंड जितनी आपकी इनकम कम है, सही बोल रहा हूँ छोटी बोल रहा, कम 2024 के नोटिस असेसमेंट पे, और जितना आपका फैमिली साइज ज्यादा है उतनी ज्यादा फंडिंग आपको आती है। जैसे डेंटल केयर प्लान है, जैसे $10 चाइल्ड केयर वाला प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, वैसे एजुकेशन का प्रोग्राम है, कोई कैच नहीं है।
0: सो दोस्तों एक बार भाई जी नंबर अपना साझा कर दो, तो मेन चीज है गवर्नमेंट कहती है भाई पढ़ो तो पढ़ाई लिए तहड़ी असी हेल्प करांगे, ग्रांट ते लोन तुहानू दे रहे ने, ते ए बड़ा जल्दी ये प्रोग्राम बंद हो सकता, बंद नहीं इहदे विच चेंजेस आ सकते ने, ग्रांट बंद हो सकती है। सो नागपाल जी एक बार नंबर शेयर कर दो।
1: हाँ जी, और छोटी सी चीज, हमारी फीस काम होने के बाद $199 to $499 है, कोई परसेंटेज कोई कमीशन नहीं है, आपके अकाउंट फंडिंग आती है, फिर आपने अपनी ईमानदारी से हमारी फीस देनी होती है, हम फीस बाद में लेते हैं, हमें कोई बोझ नहीं रखना जी। तो इसलिए इट्स वेरी गुड, और सबका अप्रूव हो जाता है, किसी का 30 में किसी का 90 days में। डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट मांग लेती है अगर उनको चाहिए, नोटिस ऑफ असेसमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, सिंपल जो डॉक्यूमेंट्स है जी, कोई इसमें घरों के कागज नहीं लगते, सिंपल थिंग। ओके, नंबर है 437-264-3175 437-264-3175 तुसी सानू हुणे भी कॉल कर सकते हो, मंडे साडे ऑफिस भी आ सकते हो, नंबर हैगा जी 437-264-3175 437-264-3175
0: 437-264-3175 ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਕਰੋ 437-264-3175 437-264-3175। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग वापस आ गए हैं जी वापस आ गए हैं जी मीह भी वापस आ गया तो बहुत जोर दी मीह पै रहा सवेर तो ही झड़ी लगी हुई है तो आस करदी हां कि तुसी भी इस मौसम नू कुदरत नू इंजॉय कर रहे होंगे रेडियो अंदाज नू ट्यून कर चुके हो जी चलो एम 5:30 ते मैं थोड़ी होस्ट परम हाजिर हो चुकी हाँ स्टूडियो च मेरे वालों साढ़े सारे लिसनर्स नू सारे परिवारों नू बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी आयां नू खुश आमदीद एंड स्वागतम

धड़कते दिलों और सुनते कानों को दानिश बुखारी का एक बार फिर से मोहब्बत भरा सलाम। आज फिर आपके दिलों पर दस्तक देने की इजाजत चाहता हूं। अपनी पेशकारी के जरिए आपको शेर व शायरी और गजलों से मुतासिर कर सकूं, तो चलते हैं गजलों की मुख्तलिफ दुनिया में, जिसे आपकी मोहब्बत ने नाम दिया है कहकशां का। जिस्मों की थकन देखी, रूहों का सफर देखा। जिस्मों की थकन देखी, रूहों का सफर देखा। इस आल में सरसर में ख्वाबों का समर देखा। जी जी के मरे हैं ये, जी जी के मरे हैं ये, मर मर के जिए हैं। बेजान से जिस्मों में सदियों का सफर देखा। समीन जिंदगी एक सफर है, ये सब जानते हैं। सफर में कौन हमदम मिल जाए कोई नहीं जानता। इजहार करना मुश्किल सा हो जाता है, तो फिर सहारा लेना पड़ता है खत का। मगर खत में क्या लिखें, क्या बयां करें, जुबान से या फिर खत के जरिए, क्योंकि इसको भी लिखने में वक्त लगता है। तो कुछ ऐसा ही जिक्र है इस गजल में, जिसे जगजीत सिंह ने अपनी पुरसोज, अपनी दिलकश आवाज में गुनगुनाया है।

आसमां हो ये मुमकिन नहीं, दर्दमंद आसमां हो ये मुमकिन नहीं, बेवफा मेहरबान हो ये मुमकिन नहीं। दर्दमंदी अता है खुदावंद की, हर बशर मेहरबान हो ये भी मुमकिन नहीं। दर्द और खुशी इंसान की जिंदगी के सफर में शामिल है, मगर कोई शख्स आपकी हैसियत को ना पहचानते हुए आपको धुएं की तरह हवा में उड़ा देता है, क्योंकि ये फितरत होती है हर शख्स की अपनी अपनी। ऐसी ही अपनी दिलकश आवाज में लता मंगेशकर ने इस गजल में यूं जिक्र किया है, धुआं बना के हवा में उड़ा दिया मुझको।

मर मर के हम जहान को जीना सिखा गए, मर मर के हम जहां को जीना सिखा गए, मुमकिन ना था जो काम वो करके दिखा गए। किसकी सदा ने फिर हमें बेचैन कर दिया, नगमात किसी के नींद से हमको जगा गए। अक्सर सामीन हम लोग अपनों का हाल पूछते हैं, मगर उम्मीद होती है कि कोई अपना या अपने दिल का हाल पूछे, मगर कौन पूछने आता है आज के इस दौर में। हाँ, अगर कोई पूछेगा भी तो यकीनन आंख सी भर आती है और दिल रो पड़ता है। कुछ ऐसी ही गजल में जिक्र है जिसे आवाज दी है नुसरत फतेह अली खान ने।